0: एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100

0: इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे, अभी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी, अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी। राजस्थान और गुजरात में छाछ जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: The Tailgate Top 20.
4: Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
3: The Tailgate Top 20.
5: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
4: Try to keep up.
6: हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुंचाई इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। और जो छह योग हैं उनको भी इनकाउंटर होना चाहिए और छहों के सातों के बिल्डोजर चलने चाहिए घर पे।
7: पुलिस का कहना है पांच नामजद लोग थे, तीन को हिरासत में ले लिया है, एक का इनकाउंटर हो गया है। आगे क्या मांगे हैं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है?
6: अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा।
8: आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, आप किराए पर रहती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जरूर की जाएंगी। माननीय मंत्री जी भी इसका आश्वासन दे के गए, असद भी यहीं रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है। इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं। जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए।
9: आई अज्यूम कमांड टुडे एज द 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ विद अ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। Being selected by the top leadership of the country for this job has been the highest honor and privilege of my life, and I'm extremely grateful to have this opportunity to serve the Indian Navy and the nation in this capacity. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operation readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they can be.

0: आपसे मेरी पहले दिन बात हुई थी, आपने पहले दिन कहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं प्रशासन से, जिसमें एनकाउंटर होना चाहिए असद का और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आज एनकाउंटर हो गया, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से?
1: हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुँचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, और जो 6 युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और 6 के 7 के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
0: पुलिस का कहना है 5 नामजद लोग थे, 3 को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है, आगे क्या मांगे हैं आप? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है?
1: अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा।
2: आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है, आप किराए पर रहती हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जरूर की जाएंगी। माननीय मंत्री जी भी इसका आश्वासन दे के गए, असद भी यही रहता है और जो सलीम वास्तविक पे जो हमला हुआ था वो भी यहीं रहते हैं, तो इसी गली में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लोग हैं, ये ट्रेनिंग का इनका हिस्सा है, इनका धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये समाज से सुकून को छीनना चाहते हैं, समाज में भय व्याप्त करना चाहते हैं, जो और बाकी लोग रह गए उनके भी एनकाउंटर होने चाहिए, उनके भी घर टूटने चाहिए।
3: आई अज्यूम कमांड टुडे एज द 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ विद अ डीप सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइड एंड ग्रेटिट्यूड। Being selected by the top leadership of the country for this job has been the highest honor and privilege of my life, and I'm extremely grateful to have this opportunity to serve the Indian Navy and the nation in this capacity. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operational readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they can be.

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया. लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है. आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं. हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा.
5: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है. एनकाउंटर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं. अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए. अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता.
6: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: continues. Police are intensifying probe and based on the available videos, multiple arrests have been made. But as the probe deepens, a fresh twist has also surfaced. BJP sources point to arrest of TMC workers for the attack, claiming possible TMC versus TMC plot. With both sides trading charges and the streets still tense, are more fireworks expected from Bengal? Bureau Report, India Today.
1: The CBSE marking row continues to intensify across the country after fiercely denying a crisis. The CBSE has now acknowledged concerns. The Central Board of Secondary Education has confirmed that its marking system has its lapses. CBSE stated that it is actively monitoring reported vulnerabilities linked to its service provider's marking portal and has begun shifting systems toward more secure infrastructure under expert supervision. The developments follow claims raised by a student researcher and ethical hackers who allege potential weaknesses in the handling of the sensitive exam data. However, ethical hacker Nisarga Adhikari told India Today that there is a technical flaw that may have allowed the access to the answer sheets. He says such vulnerabilities were flagged earlier, arguing that regular audits could have prevented such lapses, even as the CBSE has acknowledged concerns around system security. Controversy has quickly escalated into a political flashpoint, with Leader of Opposition Rahul Gandhi launching a sharp attack on the government, accusing it of dismissing student concerns and escalating tensions instead of addressing the real issue. Meanwhile, students involved in the interaction with Rahul Gandhi stated that they were called deep state agents, anti-nationals and even terrorists. The Congress has also raised concerns over alleged irregularities in the tendering process and is demanding stronger safeguards for handling sensitive student data, calling for accountability at the highest of levels. Now, my colleague Anmol Bali has spoken exclusively to ethical hacker Nisarga Adhikari, one of the individuals who first flagged serious security concerns in the CBSE marking portal, that is. In the conversation, he details the nature of the alleged vulnerabilities. Listen in.
2: CBSE OSM पोर्टल को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. निसर्ग अधिकारी है जो 19 वर्षीय एथिकल साइबर हैकर है. उन्होंने पहले भी पोर्टल की कमजोरियों को लेकर बहुत सी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की, जिसको लेकर सीबीएसई की तरफ से भी जवाब आए. पर आज देखा गया कि जब उन्होंने AWS डाटा को लेकर एक पोस्ट साझा की, उन्होंने बताया कि कैसे ही लाखों बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं उसका डेटा जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, वो डेटा बाहर आ सकता है. उसके बाद देखा गया कि सीबीएसई ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट की, उनका धन्यवाद भी किया. और सीबीएसई ने भी कहा कि आईआईटी और भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम कर इस साइबर सिक्योरिटी को और कड़ा किया जा रहा है. इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद निसर्ग अधिकारी जुड़ चुके हैं. तो निसर्ग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. पहले तो आप बताएं, जो आज आपने एक ट्वीट की है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है सारा मामला, क्या है डाटा ब्रीच?
3: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला. फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल. देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है. एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट ये लोग फिक्स नहीं करेंगे. सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है.
2: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है आपको?
3: उन्होंने ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया. उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट.
2: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
3: हाँ
2: कमजोर पोर्टल की
3: बोला
2: जो
3: था, मैंने बोला था.
2: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
3: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है. नो,
2: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने बहुत डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था.
3: हाँ, बट आज मुझे और मिल गया. और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था. उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो. वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था. सो अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से. देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था.
2: तो निशा, आपसे कोई सीबीएसई को सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
3: नहीं किया, नहीं किया।
2: सीबीएसई?
1: On that note, breaking news that's coming in now. Rahul Gandhi attacks Prime Minister and the centre yet again. CBSE's May 2025 tender required answer sheets to be scanned with automatic robotic scanners, spines preserved at a minimum of 300 dpi. The tender reissued in August quietly removed all of it. Scanners became generic, resolution dropped to 200 dpi. Now we know what that meant in practice. It has been exposed that the COEMPT scanned the answer sheets using mobile phones. The blurred copies, the missing pages, the unscanned books, they're not errors. They are the predictable outcome of a contract written to fit a vendor. This is fraud, and every child whose marks was wrongly evaluated is a victim of it. This morning, the Prime Minister had time to speak about mangoes. He has not had the time to speak about the 18.5 lakh children whose answer sheets were scanned with phones. Dharmendra Pradhan ji still sits in office. Modi ji's silence is no longer indifference, it is complicity. This is what Rahul Gandhi has yet again come out to say, attacking the centre, and Prime Minister Modi himself calling it no longer indifference but complicity. All that has been happening within the CBSE marking row that now continues. Yet again, another controversy that's hit the education system of our country. Earlier, it was the NEET UG, which still, of course, is underway. And the re-examination is on June 21st. But at the same time, it's school students, CBSE, those who took the CBSE examination, their marking and how it was done. That ends up becoming the center of a controversy this time, and it's a discrepancy that's been flagged by a student himself, and now Rahul Gandhi has also, politics has snowballed with Rahul Gandhi also coming in to speak up. He's come out to speak of a expose of a modus operandi of what exactly happened, and more importantly, yet again, he's flagged the failure of Dharmendra Pradhan in this case, all of which has been posted by the leader of the opposition of the lower house.

0: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
1: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।

0: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
1: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता। कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।

0: ट्वीट की, उनका धन्यवाद भी किया। और सीबीएसई ने भी कहा कि आईआईटी और भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम कर इस साइबर सिक्योरिटी को और कड़ा किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद निसर्ग अधिकारी जुड़ चुके हैं। तो निसर्ग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आप बताएं, जो आज आपने एक ट्वीट की है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो क्या है सारा मामला, क्या है वो डाटा ब्रीच?
1: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला। फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से, और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है, एंड ऑल देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट भेजी ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
0: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां हैं, क्या कारण लगता है
1: उन्होंने
0: आपको?
1: ये ना ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है, एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट।
0: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
1: हाँ
0: कमजोर पोर्टल की
1: बोला
0: जो
1: था, मैंने
0: कम
1: बोला था।
0: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
1: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है। हाँ
0: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
1: बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। वो भी लाइक मैंने उनको बोला था, एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करें, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
0: तो निसर्ग, आपसे कोई सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
1: नहीं किया, नहीं किया,
0: सीबीएसई?

0: तो कहाँ आपको लगता है निसर कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है
1: उन्होंने
0: आपको?
1: यार ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया।
0: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
1: हाँ
0: कमजोर
1: बोला
0: पोर्टल की जो
1: था, मैंने
0: कम,
1: बोला था।
0: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
1: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
0: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लास्ट टाइम, तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
1: हाँ बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। सो वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
0: तो निशा, आपसे कोई सीबीएसई को, सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
1: नहीं किया, नहीं
0: सीबीएसई?
1: किया,

0: पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पे डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
1: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है आपको?
0: उन्होंने ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया। हाँ
1: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके कमजोर
0: बोला
1: पोर्टल की जो
0: था, मैंने
1: कमजोर,
0: बोला था
1: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
0: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
1: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
0: हाँ, बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। सो वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
1: तो निसर आपसे कोई सीबीएसई को सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
0: नहीं
1: सीबीएसई?
0: किया, नहीं किया।
2: On that note, we are shifting our focus to the state of Karnataka, which has seen quite an action-packed political landscape with the transition of power from the former Chief Minister Siddaramaiah to the Chief Minister designate now, D.K. Shivkumar. After Karnataka's prolonged chief ministerial saga, the oath taking on June 3rd is set to be a low-key event. Karnataka Chief Minister designate D.K. Shivkumar has opted for a low-key swearing-in ceremony, saying that he does not want chaos on oath day and does not want to disrupt the lives of the people itself. The event will be held in Lok Bhavan without large crowds. While D.K. Shivakumar has secured the Chief Minister's chair, it's the composition of his cabinet that remains a work in progress. The Chief Minister designate is in fact expected to finalise his team only after consultations with the Congress High Command, and he's awaiting that nod from them, with Siddaramaiah also likely to having a significant say in the final power-sharing arrangement. Congress President Mallikarjun Kharge, however, says no proposal on deputy chief ministers or ministerial appointments have been finalised as of now, adding that a decision on cabinet expansion is likely only after June 3rd. Kharge also said that the search for the new KPCC chief, in fact, is now underway. Meanwhile, it's Congress leader M.B. Patil who met with D.K. Shivkumar but has said that his discussions were only general in nature, with a key High Command meeting due to take place tomorrow itself. Patil said leaders are ready to take up whatever responsibility the party assigns them. With the top job settled, Shivakumar is expected to head to Delhi for crucial discussions with the Congress leadership. Sources say the talks will centre on the cabinet's composition and balancing various factions within the state unit. There is also speculation that Karnataka could get two deputy chief ministers as part of the formula being worked out.
3: Since after the stampede and a lot of it is a working day, already my working president has communicated to everyone. Since our workers also had booked all thousands of buses, we don't want it to be chaos in the Bangalore city. About more than 17,000 vehicles they had booked. So all my police officers were just worried about the big chaos near Vidhan Sabha Stadium. So we decided to have a low-key function in swearing ceremony in Vidhan Sabha in Lok Bhavan. Lok Bhavan.
4: So will there be other people taking oath along with you as ministers?
3: That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done.
5: ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು 15 ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು.

0: कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहा स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट भेजी ये लोग तो फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
1: तो कहाँ आपको लगता है निसर कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां हैं, क्या कारण लगता है
0: उन्होंने
1: आपको?
0: यार ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट।
1: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
0: हाँ
1: कमजोर
0: बोला
1: पोर्टल की जो
0: था, मैंने
1: कम,
0: बोला था
1: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
0: आज मेल नहीं किया, बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
1: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
0: हाँ बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। सो वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
1: तो निशा, आपसे कोई सीबीएसई को, सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
0: नहीं
1: सीबीएसई?
0: किया, नहीं किया।
2: On that note, we are shifting our focus to the state of Karnataka, which has seen quite an action-packed political landscape with the transition of power from the former Chief Minister Siddaramaiah to the Chief Minister designate now, D.K. Shivkumar. After Karnataka's prolonged Chief Ministerial saga, the oath taking on June 3rd is set to be a low-key event. Karnataka Chief Minister designate D.K. Shivkumar has opted for a low-key swearing-in ceremony, saying that he does not want chaos on oath day and does not want to disrupt the lives of the people itself. The event will be held in Lok Bhavan without large crowds. While D.K. Shivakumar has secured the Chief Minister's chair, it's the composition of his cabinet that remains a work in progress. The Chief Minister designate is in fact expected to finalise his team only after consultations with the Congress High Command, and he's awaiting that nod from them, with Siddaramaiah also likely to having a significant say in the final power sharing arrangement. Congress President Mallikarjun Kharge, however, says no proposal on deputy chief ministers or ministerial appointments have been finalized as of now, adding that a decision on cabinet expansion is likely only after June 3rd. Kharge also said that the search for the new KPCC chief, in fact, is now underway. Meanwhile, it's Congress leader MB Patil who met with DK Shivkumar but has said that his discussions were only general in nature, with a key High Command meeting due to take place tomorrow itself. Patil said leaders are ready to take up whatever responsibility the party assigns them. With the top job settled, Shivakumar is expected to head to Delhi for crucial discussions with the Congress leadership. Sources say the talks will centre on the cabinet's composition and balancing various factions within the state unit. There is also speculation that Karnataka could get two deputy chief ministers as part of the formula being worked out.
3: Since after the stampede and a lot of it is a working day, already my working president has communicated to everyone. Since our workers also had booked all thousands of buses, we don't want it to be chaos in the Bangalore city. About more than 17,000 vehicles they had booked. So all my police officers were just worried about the big chaos near Vidhan Sabha Stadium. So we decided to have a low-key function in swearing ceremony in Vidhan Sabha in Lok Bhavan. Lok Bhavan.
4: So will there be other people taking oath along with you as ministers?
3: That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done.
5: ಈ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಅಂದ್ರೆ 8th ಮಾಡ್ತಾರೋ 10th ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು

0: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। कल जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडरों ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इससे अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी, जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है, लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है।
1: आई कंडेम ऑल दिस एंड आई एम श्योर दैट वी शैल गो टू द गवर्नर, वी शैल गो टू द हाई कोर्ट, बट आवर फाइट अगेंस्ट बीजेपी रफियंस विल कंटिन्यू। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे, अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी।

0: आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है सारा मामला, क्या है वो डाटा ब्रीच?
1: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला। फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहाँ उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ।
0: तो कहाँ आपको लगता है निसर कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है
1: उन्होंने
0: आपको?
1: ये ना ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट।
0: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
1: हाँ
0: कमजोर
1: बोला
0: पोर्टल की जो
1: था, मैंने
0: कमजोर,
1: बोला था।
0: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
1: आज मेल नहीं किया बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
0: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने बहुत डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
1: हाँ बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड प्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करें, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से, देर फाइनली अगर बोल रहे हैक हुआ था।
0: तो निसर आपसे कोई सीबीएसई को, सीबीएसई से आपको कोई मेल आया हो, कॉल आई हो, आपसे बातचीत करने की कोशिश की हो उन्होंने
1: नहीं
0: सीबीएसई?
1: किया, नहीं किया।
2: On that note, we are shifting our focus to the state of Karnataka, which has seen quite an action-packed political landscape with the transition of power from the former Chief Minister Siddaramaiah to the Chief Minister designate now, D.K. Shivkumar. After Karnataka's prolonged chief ministerial saga, the oath taking on June 3rd is set to be a low-key event. Karnataka Chief Minister designate D.K. Shivkumar has opted for a low-key swearing-in ceremony, saying that he does not want chaos on oath day and does not want to disrupt the lives of the people itself. The event will be held in Lok Bhavan without large crowds. While D.K. Shivakumar has secured the Chief Minister's chair, it's the composition of his cabinet that remains a work in progress. The Chief Minister designate is in fact expected to finalise his team only after consultations with the Congress High Command, and he's awaiting that nod from them, with Siddaramaiah also likely to having a significant say in the final power-sharing arrangement. Congress President Mallikarjun Kharge, however, says no proposal on deputy chief ministers or ministerial appointments have been finalised as of now, adding that a decision on cabinet expansion is likely only after June 3rd. Kharge also said that the search for the new KPCC chief, in fact, is now underway. Meanwhile, it's Congress leader M.B. Patil who met with D.K. Shivkumar but has said that his discussions were only general in nature, with a key High Command meeting due to take place tomorrow itself. Patil said leaders are ready to take up whatever responsibility the party assigns them. With the top job settled, Shivakumar is expected to head to Delhi for crucial discussions with the Congress leadership. Sources say the talks will centre on the cabinet's composition and balancing various factions within the state unit. There is also speculation that Karnataka could get two deputy chief ministers as part of the formula being worked out.
3: Since after the stampede and a lot of it is a working day, already my working president has communicated to everyone. Since our workers also had booked all thousands of buses, we don't want it to be chaos in the Bangalore city. About more than 17,000 vehicles they had booked. So all my police officers were just worried about the big chaos near Vidhan Sabha Stadium. So we decided to have a low-key function in swearing ceremony in Vidhan Sabha in Lok Bhavan. Lok Bhavan.
4: So will there be other people taking oath along with you as ministers?
3: That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done.
5: ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು,

0: बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं। कल जो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ, हमने अपने पार्टी की तरफ से और सारे लीडरों ने दिखाया कि कैसे बीजेपी के महिला मोर्चा की अध्यक्ष हाथ में अंडा लिए हुए इंतजार कर रही है और बोली कि हम इससे अभिषेक बैनर्जी का स्वागत करेंगे। ये बीजेपी की मंडल अध्यक्ष थी, कोई आम जनता नहीं थी जिसको प्रेस दिखा रही कि आम जनता ने ऐसा किया। जिसने पत्थर उठा के मारा वो बीजेपी का सदस्य है, लेकिन खेद इस बात का है कि बताया जा रहा है कि पब्लिक मार रही है।
1: आई कंडेम ऑल दिस एंड आई एम श्योर दैट वी शैल गो टू द गवर्नर, वी शैल गो टू द हाई कोर्ट, बट आवर फाइट अगेंस्ट बीजेपी रफियंस विल कंटिन्यू। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का, लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी।
2: Right now we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. I mean, this is a high stakes negotiation. We've got the best negotiator in the world leading it. Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. But the most powerful incentive is the capabilities we have there right now, which they can't ultimately defend against at any real level. And those are decisions in the future the president will make based on how this ends. But I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people. I think our message today was very much in sync with precisely where the president wants to go, which is we're going to be strong. But we can speak softly while carrying that big stick and be very clear about the fact that there are places where we can work together with China. We respect their ambitions. We know that they have a significant military buildup. That comes with considerations we have to take as a sovereign nation to ensure that we're prepared for any possible contingency. At the same time, our position hasn't changed on Taiwan. I said that publicly in my remarks today.

0: It's a five-story building that's collapsed in South Delhi today, and the tragedy has triggered a massive emergency response amid fears that multiple individuals remain trapped under the debris. Here is a report on the same. Take a look.
1: A five-story building has collapsed in Delhi's Mehrauli area, claiming multiple lives and leaving dozens injured. India Today has accessed footage of the tragedy caught on camera by eyewitnesses. The collapse of the ill-fated building, which housed a coaching centre, a mess, a paying guest house and residential accommodation, has triggered a massive emergency response. Rescue teams have moved in to extricate trapped people. The Delhi Fire Service led the initial response and later scaled up operations. Emergency teams continued intensive search operations through the night and extricated over 10 people from the rubble.
2: Building katai illegal thi. Uspe pehle 4 manzil thi, uspe 3 manzil aur chadhaya. Building ne apna pressure khoya, building gir gayi. Jaise building giri hai, jis pass wali building mein coaching chal rahi thi, us coaching ke upar aake giri, kuch bache wahan injured hue.
3: Ab NCT ko bulao, unse poocho yahan pe kitni buildings hai jo illegal hai, aur sari building hai girao, kyunki aap to nahi manna na yaar, kitni baar marenge, aap mar jaoge, ye bhi mar jayenge, sab mar jayenge, fir rahega kaun NCT?
4: The authorities are engaged into the rescue operations to find out as many as people alive possible, because all, you know, the initial for 24 hours are always a golden period, but there could be possibility to recover people alive from the debris, since it's a five-story building, not everything collapsing in a way. And but at the same time, of course, the people who are concerned for their loved ones, that we see the people are also gathering here in a number. Police is also maintaining law and order, but there is anger since the people who have lost their loved ones, and since there is no information about their whereabouts.
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the site to oversee rescue operations. The Chief Minister has assured that strict action will be taken against unauthorized constructions. Consequently, cops have swung into action to nab the owner of the collapsed building, Karamveer Jeldar. In addition to registering an FIR, Delhi police have conducted a raid to arrest Karamveer. Beyond the tragedy lies a damning question. How many more such buildings are silently waiting to collapse? The Mehrauli incident is a grim reminder that the Municipal Corporation of Delhi must urgently conduct an exhaustive ward-by-ward survey of structurally dangerous buildings across the capital. The rubble must become a reminder, not just a headline. Bureau Report, India Today.
0: A dramatic twist in the sensational Surya Chauhan murder case. Cops acted on a tip-off to nab the key accused, identified as Asad. A police team laid a trap in Ghaziabad's Khora area and kept surveillance on the suspected route. While three other accused have already been arrested in connection with the brutal killing of the 17-year-old. When police personnel attempted to intercept Asad, he allegedly opened fire on the team. In the exchange that followed, police retaliated and Asad sustained gunshot injuries. Asad later succumbed to his injuries while undergoing treatment at the hospital. Surya's distraught family has hailed the encounter of Asad and demanded that other accused must also be brought to justice. Surya was mercilessly stabbed to death on Bakrid following an argument with the accused. In view of the prevailing tension, a heavy police force has been deployed in Ghaziabad's Khoda.
5: आपसे मेरी पहले दिन बात हुई थी, आपने पहले दिन कहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं प्रशासन से, जिसमें एनकाउंटर होना चाहिए असद का और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आज एनकाउंटर हो गया, आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से?
6: हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुँचाई, इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, और जो छह युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और छहों के सातों के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे।
5: पुलिस का कहना है पांच नामजद लोग थे, तीन को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है, आगे क्या मांगे हैं आप? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है?
6: अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा।
7: सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है,
6: मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए, क्यों उनने सबने मिल के किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने सात लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
7: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया। लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
8: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।
0: TMC MP Abhishek Banerjee was allegedly attacked by a mob while visiting families of post-poll violence victims in Sonarpur. Stones, eggs and chor chor slogans greeted him. The mob allegedly tore his shirt, broke his spectacles. Security personnel had to rush in to escort him out safely. A similar treatment allegedly given to Kalyan Banerjee, but as the probe in the case deepens, more skeletons continue to tumble out of the closet. Take a look at this news report.
9: BJP has ousted TMC that ruled Bengal for 15 years. But there seems to be no end to violent display of public anger. And this time, on target are TMC leadership. Eggs and stones were hurled at Abhishek Banerjee while he was in Sonarpur to meet families affected by post-poll violence on Saturday. An angry mob chanted Chor Chor and tried to attack Abhishek Banerjee, who escaped in a helmet.
10: But ye log chahta hai ki yahan pe ek maut hua aur do char laash gire tabhi tamil logo ko sukoon milega ya kalije mein thandak pahunchega, to inko jo karna hai karne dijiye, hamare paas sab recorded hai, hum court mein jayenge and I will go up to the Supreme Court to fight this case.
9: In another alleged mob attack, Kalyan Banerjee was hit with a sharp object while he was going to participate in a protest over the attack on Abhishek Banerjee. High drama unfolded after both attacks. TMC has accused BJP of orchestrating these attacks.
11: There was 10 or 15 BJP goons with saffron, that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. A stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago.
9: After the attack, when Abhishek Banerjee was rushed to the hospital, the team of doctors claimed that the Trinamool MP did not sustain any serious injury and was therefore discharged. But former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee alleged that BJP is threatening doctors, therefore Abhishek was discharged. Mamata Banerjee allegedly berated and threatened the CEO of the hospital.
12: You forcefully drove me, mistreated, you did it. Never treated a patient
9: In a viral video clip, Mamata Banerjee can purportedly be heard lashing out at Pradeep Tandon, the CEO of Bellevue Hospital, while accusing him of wrongdoing and warning him of consequences. Mamata Banerjee continues her attacks outside hospital.
12: They said, let us ask the CEO. We have to take permission. Then if any patient comes, then you have to take permission from BJP party. Hospital is not allowing the treatment because they are under threatening. They told us. And without informing us, they have released the medical bulletin because of police patient.
9: However, BJP and allies rubbished all the charges hurled by TMC and denied any involvement in this incident.
13: Doctor, agar sochega ki aapko kuch hua nahi hai, aapko sirf ek pan 40 ka zarurat hai, aapko kya hospital mein bharti kiya jayega? Aapko bed diya jayega, ha? Natak karne ke liye, rajneeti karne ke liye. डॉक्टर लास्ट बात बोलेगा ना, हम तो नहीं बोल सकते, सीएम साहब तो नहीं बोल सकते, ममता बनर्जी आप भी नहीं बोल सकते.
14: तो टीएमसी की जब सरकार थी तभी हिंदुओं को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में उनको दुर्गा पूजा करनी मिलती नहीं थी, हिंदू की पहचान बताने के बाद तुरंत उनको मार डाला भी जाता था. तो इसलिए मुझे लगता है हिंदू समाज, सनातन हिंदू धर्म में हम लोग सूद समेत सब कुछ वापिस देते हैं.
9: As the political mudslinging continues, police are intensifying probe and based on the available videos, multiple arrests have been made. But as the probe deepens, a fresh twist has also surfaced. BJP sources point to arrest of TMC workers for the attack, claiming possible TMC versus TMC plot. With both sides trading charges and the streets still tense, are more fireworks expected from Bengal? Bureau Report, India Today.
0: The CBSE marking row continues to intensify. After fiercely denying a crisis, the CBSE has now acknowledged concerns. The Central Board of Secondary Education has confirmed that its marking system has lapses. CBSE stated that it is actively monitoring reported vulnerabilities linked to its service provider's marking portal and has begun shifting systems toward more secure infrastructure under the expert supervision. The developments follow claims raised by a student researcher and ethical hackers who allege potential weaknesses in the handling of sensitive exam data. However, ethical hacker Nisarga Adhikari, who told India Today that there's a technical flaw that may have allowed access to answer sheets. He says such vulnerabilities were flagged earlier, arguing that regular audits could have prevented such lapses, even as the CBSE has acknowledged concerns around the system security. Controversy has quickly escalated into a political flashpoint, with Leader of Opposition Rahul Gandhi launching a sharp attack on the government, accusing it of dismissing the student concerns and escalating tensions instead of addressing the issue. Meanwhile, students involved in the interaction with Rahul Gandhi stated that they were called deep state agents, anti-nationals and even terrorists. The Congress has also raised concerns over alleged irregularities in the tendering process and is demanding stronger safeguards for handling sensitive student data, calling for accountability at the highest of levels. Now, my colleague Anmol Bali has spoken exclusively to ethical hacker Nisarga Adhikari, one of the individuals who first flagged serious security concerns in the CBSE marking portal, that is. In the conversation, he details the nature of the alleged vulnerabilities. Listen in.
15: CBSE OSM पोर्टल को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. निसर्ग अधिकारी है जो 19 वर्षीय एथिकल साइबर हैकर है, उन्होंने पहले भी पोर्टल की कमजोरियों को लेकर बहुत सी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की, जिसको लेकर सीबीएसई की तरफ से भी जवाब आए. पर आज देखा गया कि जब उन्होंने AWS डाटा को लेकर एक पोस्ट साझा की, उन्होंने बताया कि कैसे ही लाखों बच्चों की जो आंसर शीट्स हैं उसका डेटा जो है वो टेम्पर किया जा सकता है, वो डेटा बाहर आ सकता है। उसके बाद देखा गया कि सीबीएसई ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट की, उनका धन्यवाद भी किया, और सीबीएसई ने भी कहा कि आईआईटी और भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम कर इस साइबर सिक्योरिटी को और कड़ा किया जा रहा है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद निसर्ग अधिकारी जुड़ चुके हैं। तो निसर्ग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो आप बताएं, जो आज आपने एक ट्वीट की है जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या है सारा मामला, क्या है डाटा ब्रीच?
16: आज सुबह मैंने सीबीएसई, जहाँ पे सीबीएसई पेपर स्टोर करते हैं, उनका जो बकेट था उसका लिंक मुझे मिला। फिर मैंने ऑडिट किया ठीक से और मुझे मिला कि वो जो ओपन है, एनीवन विद अ लाइक इंटरनेट कनेक्शन कैन सी लाइक कहा उनके पेपर्स में क्या है, कहाँ स्टोर हो रहे पेपर, कितने पेपर्स है, कौन से कॉलेजेस के पेपर्स है एंड ऑल, देख भी सकते, ब्राउज भी कर सकते पीडीएफ जो भी है। एंड मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया जहाँ पे मैंने डेटा सेंसर कर दिया और मैं ट्विटर पर डाल दिया सीबीएसई को टैग करके, क्योंकि मैं अगर रिपोर्ट ये लोग फिक्स नहीं करेंगे। सो उसके बाद ये वायरल हो गया, सीबीएसई ने बोला हाँ हैक हुआ है।
15: तो कहाँ आपको लगता है निसर्ग कमजोरियां जो सीबीएसई के पोर्टल में है, कहाँ कमजोरियां, क्या कारण लगता है आपको?
16: उन्होंने ऑडिट नहीं किया ठीक से, कोड भी पुअर क्वालिटी का है एंड कोड लाइक ठीक से ऑडिट नहीं किया। उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया, फिर भी वो रिपोर्ट भी एक्नोलेज नहीं हुआ, सो इसलिए मैंने वो लिख दिया ट्वीट।
15: आपने इससे पहले भी फेब के महीने भी सीबीएसई को उनके
16: हाँ
15: कमजोर पोर्टल की
16: बोला
15: कमजोर
16: था, मैंने
15: कमजोर
16: बोला था।
15: अभी भी कोई आपने सीबीएसई को मेल किया है सबको लेकर, जो आज आपने जो फाइंडिंग्स जारी की हैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर?
16: आज मेल नहीं किया बट आज उन्होंने बोला ये हुआ है ना।
15: तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लास्ट टाइम तो उन्होंने वो डिनाई किया, उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पोर्टल था, सही वाला पोर्टल नहीं था।
16: हाँ बट आज मुझे और मिल गया, और उनका जो फ्रॉड का पोर्टल था वो भी मैंने 3 दिन पहले हैक किया था, सीबीसी को पूछा भी था। उनके साइट पे मैंने मेरा खुद का एक पेज डाल दिया था मीम्स से भरा के, बैड एप्पल मीम जो था, बहुत इंडिया टुडे ने भी कवर किया था वो। सो वो भी लाइक मैंने उनको बोला था एंड फ्रॉड भी हैक हुआ था। सो अब एक्नोलेज करो, मुझे अच्छा लग रहा है ठीक से। देर फाइनली अगर बोल

0: are watching India Today.
1: It's a five-story building that's collapsed in South Delhi today, and the tragedy has triggered a massive emergency response amid fears that multiple individuals remain trapped under the debris. Here is a report on the same. Take a look.
2: A five-story building has collapsed in Delhi's Mehrauli area, claiming multiple lives and leaving dozens injured. India Today has accessed footage of the tragedy caught on camera by eyewitnesses. The collapse of the ill-fated building, which housed a coaching centre, a mess, a paying guest house and residential accommodation, has triggered a massive emergency response. Rescue teams have moved in to extricate trapped people. The Delhi Fire Service led the initial response and later scaled up operations. Emergency teams continued intensive search operations through the night and extricated over 10 people from the rubble.
3: Building katai illegal thi. Uspe pehle 4 manzil thi, uspe 3 manzil aur chadhaya. Building ne apna pressure khoya, building gir gayi. Jaise building giri hai, jis pass wali building mein coaching chal rahi thi, us coaching ke upar aake giri. Kuch bache wahan injured hue.
4: Ab NCT ko bulao, unse pucho yahan pe kitni buildings hai jo illegal hai. Aur sari buildings girao, kyunki aap to nahi manna na yaar, kitni baar marenge. Aap mar jaoge, ye bhi mar jayenge, sab mar jayenge, fir rahega kaun NCT?
5: Moment the authorities are engaged into the rescue operations to find out as many as people alive possible, because all, you know, the initial for 24 hours are always a golden period, but there could be possibility to recover people alive from the debris, since it's a five-story building, not everything collapsing in a way. And but at the same time, of course, the people who are concerned for their loved ones, that we see the people are also gathering here in a number. Police is also maintaining law and order, but there is anger since the people who have lost their loved ones, and since there is no information about their whereabouts.
2: Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the site to oversee rescue operations. The Chief Minister has assured that strict action will be taken against unauthorized constructions. Consequently, cops have swung into action to nab the owner of the collapsed building, Karamveer Jeldar. In addition to registering an FIR, Delhi police have conducted a raid to arrest Karamveer. Beyond the tragedy lies a damning question. How many more such buildings are silently waiting to collapse? The Mehrauli incident is a grim reminder that the Municipal Corporation of Delhi must urgently conduct an exhaustive ward-by-ward survey of structurally dangerous buildings across the capital. The rubble must become a reminder, not just a headline. Bureau Report, India Today.
1: A dramatic twist in the sensational Surya Chauhan murder case. Cops acted on a tip-off to nab the key accused, identified as Asad. A police team laid a trap in Ghaziabad's Khora area and kept surveillance on the suspected route. While three other accused have already been arrested in connection with the brutal killing of the 17-year-old. When police personnel attempted to intercept Asad, he allegedly opened fire on the team. In the exchange that followed, police retaliated and Asad sustained gunshot injuries. Asad later succumbed to his injuries while undergoing treatment at the hospital. Surya's distraught family has hailed the encounter of Asad and demanded that other accused must also be brought to justice. Surya was mercilessly stabbed to death on Bakrid following an argument with the accused. In view of the prevailing tension, a heavy police force has been deployed in Ghaziabad's Khoda.
6: आपसे मेरी पहले दिन बात हुई थी. आपने पहले दिन कहा था कि मेरी कुछ मांगे हैं प्रशासन से, जिसमें एनकाउंटर होना चाहिए असद का और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए. तो आज एनकाउंटर हो गया. आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से?
7: हाँ, बाबा मोदी योगी ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने और मीडिया ने इतनी ऊपर तक बात पहुँचाई. इन लोगों के लिए हमारी धन्यवाद, जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया. और जो छह युवक हैं उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए और सातों के बुलडोजर चलने चाहिए घर पे.
6: पुलिस का कहना है पांच नामजद लोग थे, तीन को हिरासत में ले लिया है, एक का एनकाउंटर हो गया है. आगे क्या मांगे हैं आप? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी इंसाफ मिल गया है?
7: अभी इंसाफ मिला है लेकिन पूरा नहीं मिला है, पर हमारे सब लोगों की सहायता से इंसाफ हमारा पूरा होगा.
8: सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है.
7: मुझे तस्वीर असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए, क्यों उनने सबने मिलकर किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने सात लड़कों ने मिलकर किया है, तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए।
8: देखिए, सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉल पे गाजियाबाद पुलिस को बहुत धमकाया, लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद की पुलिस नहीं चला पा रही, तो गलती तो गाजियाबाद पुलिस की है। आदरणीय मुख्यमंत्री, जब जब जिले में धमकाएंगे नहीं कप्तान को, तब तक या तो मुसलमान की बलि चाहिए मुख्यमंत्री जी को, या तो ब्राह्मण की बलि चाहिए, या यादव की बलि चाहिए, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी शांत होते हैं। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सेना के हाथ में दे देना पड़ेगा, तभी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा।
9: एनकाउंटर अपराध नियंत्रण का हथियार नहीं हो सकता है। एनकाउंटर गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मंचों से एनकाउंटर की प्रशंसा करके असल में वो अपनी असफलता को छिपाना चाहते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए अपराधियों को पकड़िए, उनको जेल भेजिए, पैरोकारी करिए और उनको सजा दिलाइए। अपराध ऐसे नियंत्रित होता है, अन्यथा ऐसे पुलिस के बेलगाम होने के अलावा दूसरा कोई उपलब्धि उत्तर प्रदेश को हासिल नहीं हो सकता।
1: TMC MP Abhishek Banerjee was allegedly attacked by a mob while visiting families of post-poll violence victims in Sonarpur. Stones, eggs and chor chor slogans greeted him. The mob allegedly tore his shirt, broke his spectacles. Security personnel had to rush in to escort him out safely. A similar treatment allegedly given to Kalyan Banerjee. But as the probe in the case deepens, more skeletons continue to tumble out of the closet. Take a look at this news report.
10: BJP has ousted TMC that ruled Bengal for 15 years. But there seems to be no end to violent display of public anger.